जय गुरु गुरु निवास अंतर्यामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हजरिया बरदे होए कीर्तन दे सत्काव जो संगता लो बेंत माया हाजिर होए जिस खजाने विच माया हाजिर कीती सो सखजाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन बसना दे अरक्ता बख्शनिया साम सा संपूर्ण करनी यात्रा सफल करनी।

करता करीम सोए राज कर रहीम होई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मानवो एक ही किसे सब ही को गुरु देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज होई मान सब एक पयाने को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाग बाद आतस ओ आव कोर लाव है अल्लाह अभेक से पुराण ओ कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे जैसे एक दूर ते अनेक दूर बूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत वच केते अच वच होए सपच उड़ जाहेंगे केते नब बीच अच पच को करेंगे वच केतक प्रतच होए पचाए खाए जाहेंगे जल कहा थल कहा गगन के गौन कहा काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज रेन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंगवासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअप चढ़त कित दुख को भरत है कैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है सोधहार देवता विरोध हार दानव बड़े बोध हार बोधक प्रबोध हार जापसी घास हार चंदन लगाए हार चुआचार बूज हार पाहन चढ़ाए हार लापसी गाह हार गोरन मनाए हार मड़ी मट लीप हार वितन लगाए हार जापसी गाय हार गंधर्व बजाए हार किन्नर सब पच हार पंडित तपन

नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग वेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनी अच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं वैनर्विखादं अछेदं अभेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं बालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध

कहूं सर्व भूपां कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं जच विद्या धरे मान भी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के

वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टा चार जिक्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूरण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा बक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छल छल धरे छत्रधारी कहूँ राजसाजं धी राजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी छयाद अद्वै विधाता न त्रस्तं न

अंशे जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख।

तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत गई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मंद पावक झुलंत कई सिमृत सासर दुचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई अगन होत्र कई पवन हार कई कर्त कोट वृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तदप देव हो वत्पताच्छ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई गलत भांत भांतन विचार नहीं एकदास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्नहोत्र कई देव

न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्र चितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रो बिंद न गिंद न गंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तजोत भुजंग ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जंप है किन्नर जाछ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जेहे अंडज से तज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बनी वन जास कियो फल फूल कली वो अमेर आकाश निवास चितंग रज रोज एकाद चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अनदूत भूत छूत मतंगन गाद पियाद अनाद गतंगन खेद अवेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद।

नहि कोट वृत्ति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है त्वा प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए नराग रंग रूप है न रोग राग रेग है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न दात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेघ सेग भेक है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व वर्ण है जिमी जमान के विघे सदीव करम भरम है अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में।

न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है।

गंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदी विद्याल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभ्रम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है, सदा छिज

है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त याद जे बड़े तपस्त भी विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ भी किये अगाध आद देव की अनाथ बाद मानिए न जात बाद मंत्र मित्र सत्र सने जन

सेज नाम सहांस वर्ण है नेत पूर्ण होत। सोत सोत हटे सभय सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब। पड़त पड़त थके महागप गढ़ गाढ़ अनंत, हार हार कहियो सबू मिल नाम नाम दुरंत। वेद भेद न पाए।

देवा देव गंधर्व किन्नर माछक अक्षय अपार भूमकाज लेथले मेहमानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ

दुष्ट हरणं पुष्ट कर्णं सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भोगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूमा का जले तले मह जबद जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावई शिव रुद्र ओम मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र।

सत द्वापर तृतीयकल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामृगाय गंधर्व पार हार हार थके सबै नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबै कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल्पित तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार कौन धर्म को कर्म है।

कवान सृष्ट को भ्रष्ट है, कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है, कहाँ भ्रम को नाश। कहाँ चेतन की चेष्टा, कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम, कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान। को रोके सो के कवन।

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रत्यय चरासुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंड अलख मते जय जय होशी मैखा सुर मर्दन रम कवर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

वरदान दयाद जिणन चंडासुर चंडन मुंड मिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण दुजा फलंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो से महासुर मर्दन भूम आकाश लूर्ध दे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ

गुंगुरु घमंगण सत जमंगण फणि अर्भुं कारण धरम तुझे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगम था हे एक प्रति जय जय हो श्री महासुर मर्दन आदि कुमार अगाध प्रति सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन अमृत मथे गावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे

रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल वधे सरदार विपरखण दुर्जन धरखण तुलना मरखण धर्म तुझे धूमराज विध्वंसन श्रोणत दुंसन सुंभन।

दयाल दाता दुरंत दुख दोग रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच की नो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए ब्रह एक रूप द्वय कै लखाए। अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दू एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल।

टूटी जम की फांसी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

तैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव।

कैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणघाता। जे अस दुजतौ सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित भय मरे

नर हो सब तोहे मैं खांदियो सब तोहे ब्रांदियो सकल द्वार कब छाड़ कर कब छाड़ कर द्वार द्वार बाहे करे की लाज मस्त की लाज गोविंद दा

पांडव ही पंडित जय पंडे बाजना को नाम पंडे बारा एक सच्चा सो जितम कुसदास।